0: समय आगे भी कई पंछी आने वाले हैं, दो चार पंछी तो जरूर आएंगे, पर पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ किसने संपर्क किया है सबसे पहले। और ये हैं हैप्पी थर्सडे कहने वाली प्रणाम, ये है रेखा शाह, बहुत शुक्रिया। सोनल मोदा कहते हैं कि ओ अच्छा, मेरे ख्याल से ये जमील और रहमत के लिए मेंशन था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल, यू गाइस रॉक, ये कहा है जमील और रहमत को। टीना ने, क्या बात है, आप एंजॉय करते हैं ना ब्रेकफास्ट, मुझे ऐसा फील होता है जब मैं आती हूँ ना कि आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अब यहाँ पर 10 बजे आ जाती हैं कौन, रूपल, गुड मॉर्निंग स्पिरिचुअल डे एंड द रिक्वेस्ट इज तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, फ्रॉम द मूवी द बर्निंग ट्रेन। ओके, निकाल लेंगे वो भी गाना रूपल के लिए। चिराग पटेल हमारे साथ हैं और सलमा अहमद क्या कहती हैं वो देखना है।
1: जिंदगी में याद रखने वाली कुछ बातें सुनिए, कभी उसको सॉरी मत बोलो जो आपको पसंद करता है, कभी उसको बाय यानी खुदा हाफिज मत बोलो जिससे आपकी जरूरत हो, कभी उस पर शक मत करो जो आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा रखता हो, कभी उसे मत बुलाना जो तुम्हें याद रखता है, कभी उसको मत रुलाना जो आपको रोता देख खुद रो पड़ता हो। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुमो।
0: क्या बात है, पर आपने कहा कि बच्चे इसको प्यार करते हैं ना उसको सॉरी नहीं कहना, समय नहीं कहते, आदत हो जाती, फिर बाद में कहते तूने कभी भी शुक्रिया अदा किया है या माफी मांगी, फिर शिकायत शुरू हो जाती है, ये मैंने देखा है, पर फिर भी ट्राई करके देखें ना कहें। सैलीडार इन लंदन, टाइम इज फ्री बट इज प्राइसलेस, क्या बात है। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इन गाना fantasy coffins are crafted in the shape of objects that represent the deceased's life. Oh, for life, ko phir se padhenge thodi der ke baad, pehle panchi ko dekhen kya kar raha hai.

0: अल बेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। और सबने हम आपको बता दें कि कल इंडियन हाई कमीशन की जानिब से हमारे साथ कोई होंगे मेहमान आएंगे और उनसे बात होगी। किस पर सब बात यह है कि 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक ऑशुल जो सेंटर है उसकी ग्राउंड्स पर आप सब आएंगे और एम्ब्रेस करेंगे योगा को। जी हाँ, तो याद रहे कि 21 जून इतवार का दिन है, सुबह 7 से 8 बजे ऑशुल सेंटर। रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी, समय आप करें वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी अगर आप लिखते हैं तो आपको मजीद मालूमात मिल जाएंगी, आप रजिस्टर कर लीजिएगा। वैसे इंटरव्यू कल सुबह 11 बजे फ्राइडे का दिन है, इंटरव्यू होगी, वो ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसके साथ, शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन गाना, फैंटेसी कॉफिन्स आर क्राफ्टेड इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट द डिसीज्ड लाइफ। पर ये मैंने काफ़ी बरस पहले भी पढ़ा था कि समझ, अगर वो बड़ा कार गाड़ियों का शौकीन था मरने वाला, तो वो कहकर जाए तो उसके लिए गाड़ी के रूप में अल्लाह उसका ताबूत बना दिया जाता है, कॉफिन जिसमें वो मरने के बाद लेटा होगा, वो गाड़ी की शेप होगी। अब शमीम कहती है इट कुड बी अ फिश, इट कुड बी अ कार और एरोप्लेन, सो द फ्यूनरल बिकम्स अ फाइनल पर्सनैलिटी स्टेटमेंट कि वो पर्सन कैसा था मरने वाला। जी हाँ, समझ, कुछ देशों में ये भी होते हैं, चोचले ही समझो और क्या कहेंगे। भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन ट्यून्ड इन और कहते हैं, देखिए वंदनीय प्रवीण जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया मंजू डगर। अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी टू ऑल द लिसनर्स एज वेल। दुनिया से आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ मंजू डगर, ये ज़रा सैड सा है, जब हमारा मूड सैड हो जाएगा हम जरूर करेंगे, वो भी आपको सुनाएंगे।
1: ओ आजा पंछी अकेला है, ये गाना फिल्म 2211 का है, 1957 की मूवी है, जिसको मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन एसटी बर्मन ने बनाई है। ये गाना देवानंद और कल्पना कांतिर पे फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि अमीर अली राणा क्या कहते हैं। और समिन, जब आप फरमाइश करें तो सुबह सुबह अगर आप बहुत सैड गाने की फरमाइश करेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने एक तरह के गाने चुने हुए हैं और उसमें अगर रोना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेरे गानों का मूड बदलेगा। और अमीर अली रानी, परवीन जी विशिंग यू एंड ऑल द लिस्ट गुड मॉर्निंग। शिकवा तो बहुत है ज़िंदगी से, पर लफ्ज़ों में बयान नहीं होता, जो दर्द दिल में बस जाते हैं वो अक्सर आसान नहीं होते। हाँ, जो दिल में बस जाएं दर्द वो आसान नहीं होते, और दिल का दर्द बताना भी लफ्ज़ों में बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छे रसीला शाह, अमीर अली राणा ने तो कह दिया है। और रसीला शाह, व्हाट गुड म्यूज़िक, आगे भी बहुत अच्छे गाने हैं जो बार बार मैं रिपीट नहीं करती। वॉइस वी हैव स्टार्टेड विद पंछी, आई रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग पिंजरे के पंछी रे, ये भी बहुत सैड है, प्लीज थोड़ी देर के बाद। और दिस इज रेखा शाह, कीप डूइंग योर बेस्ट एवरी सिंगल डे, इफ नो वन इज प्राउड ऑफ यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अगर आप पर कोई मान नहीं करता अपने आप पर मान करते जाएं वो भी बड़ा मुश्किल होता है। चंद्रिका वासंत गोसाई, बहुत मेहरबानी आपकी। और हम बात करेंगे एमएल विश्वकर्मा से इस गाने के बाद।

और समिन, वर्चुअल मीटिंग्स का आपने सुना हुआ है ना कि क्योंकि जब कोविड हुआ तो इकट्ठे लोग नहीं बैठ सकते थे एक मकाम पर, तो उन्होंने कहा कि ओके आप वीडियो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, आप वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल लें, हर कोई अपने मोबाइल के करीब अपने कंप्यूटर के करीब बैठ जाता और सारी मीटिंग्स ऐसे होती थी, आपको स्क्रीन पे देखा जा सकता था, आप जो बात करते थे वो बात सुनी जा सकती थी। आजकल भी होती हैं वर्चुअल मीटिंग्स, तो ये रिवाज चल पड़ा था कोविड के ज़माने में क्योंकि सामने एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ऑनलाइन बैठक होती। अब वर्चुअल माता पिता आ गए हैं, समिन माता पिता कैसे आ सकते हैं वर्चुअल, समिन हो रहा है, आपको इतनी हैरत होगी, जो वर्चुअल माता पिता हैं अपने ऑनलाइन बच्चे को हौसला देते हैं, ये ऑनलाइन है माँ बाप और बच्चा इनका भी ऑनलाइन है, देखा नहीं है कभी, तो वो जो ऑनलाइन माँ बाप है ना वो सलाह देते हैं, खबरदार करते हैं बच्चे को, ये ना कर, बहुत थक गए हो ना तुम, अब इतनी भी मेहनत ना करो, डोंट वर्क टू हार्ड, ऐसी बातें कह रहे हैं ऑनलाइन जो माता पिता है। चाइनीज ऐप है समझ, ये डूइन, इसके 20 लाख फॉलोअर्स हैं, चाइना में किसी ने ये शुरू किया है कि अगर आपके माँ बाप के पास इतना नहीं है वक्त या वो आपको इनकरेज नहीं करते, आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तो आप पता क्या, हम आपको ऑनलाइन ऑप्शंस देंगे माता पिता के, वो अच्छे होंगे आपके साथ। तो वर्चुअल पेरेंट्स का आ जाएगा दौर, जो तंग आ चुके हैं ना बच्चे असल माँ बाप से, वो ये करेंगे कि ऑनलाइन माँ बाप को लेकर उनसे बातें करेंगे, और ये जो ऑनलाइन है उन्होंने करना क्या है, बस बातें मीठी मीठी करनी हो और क्या।

0: ये देखते हैं कि अजय पाल क्या कहते हैं।
1: परवीन जी, आज पक्षी और परिंदों की बात चल रही है तो कुछ कहना चाहूंगा। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे प्यार है मुझसे और मुझे प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी मैंने उसके, न पर बांधे कभी मैंने। न पर कतरे कभी मैंने उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर दौड़ कर पिंजरे में आता है। वो उड़ता है मगर फिर दौड़ कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हो जाए परिंदों पर। तुम तो कहते हो परिंदों से मोहब्बत है बहुत। तुम तो कहते हो परिंदों से मोहब्बत है बहुत। ये अगर सच है तो फिर जाल बिछाया ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, धन्यवाद।
0: बहुत अच्छे अजय पाल। क्यों जाल बिछाते हो अगर परिंदों से मोहब्बत है। बहुत खूब। दिनेश पोपट, जा रे उड़ जा रे पंछी, कहते हैं आई हैव हर्ड इट आफ्टर 65 ईयर्स। और ये बात सही है क्योंकि बेमिसाल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सुनाया हो, आज सुनाया है। आई यूज़ टू प्ले दिस ऑन 45 RPM, समय वो होते थे ना वाइनल रिकॉर्ड, इन माय कार रिकॉर्ड प्लेयर, गाड़ी में भी होते थे समय रिकॉर्ड, कैसेट भी होती थी गाड़ी में। कितना भी लंबा सफ़र हो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता था क्योंकि आप गाने सुन रहे होते थे। एन्जॉइंग योर प्लेलिस्ट, दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप कैंट। ओके, आगे भी बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं। और परवीन जी, अबाउट के पंछी, पिंजरे के पंछी, या वो मैंने बहुत ढूंढा है, इस वक्त नहीं मिल रहा। आई लव द जेम, यू आर जस्ट ग्रेट परवीन जी। या पिंजरे के पंछी, आई एम अमेज्ड, ये था हमारे पास, ना जाने कहीं छुप के बैठा हुआ है, मुश्किल है।
2: ओ जा रे उड़ जा रे पंछी, ये गाना फिल्म माया का है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको मजू सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन सलील चौधरी ने बनाई है। ये गाना मलेशिया पे फिल्माया गया है, उसके साथ देवानंद भी ये मूवी में थे। ये मूवी के दूसरे गाने भी अच्छे हैं। सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। हाँ, अब सामने मेरा सवाल आता है बंद पर। बंद क्या हुआ? डैम, DAM, आप तो जानते हैं ना, नदियों पर बनते हैं। कौन तामीर कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: This is how it has helped Rupal. Thank you. और जो कहा है सलमा ने, उन्होंने कहा है उफ अल्लाह, ये किसने बनाई है कड़ी और चावल और आपको दावत दी है? ये उसने बनाई है जिसके घर मुझे जाते जाते करीब एक घंटा तो लगेगा और वहां से जाते वापस घर एक घंटा. सो आई डोंट नो कि दो घंटे के लिए ये वर्थ है कि नहीं है, देखती हूँ. बहुत खूब शहजादी साहिबा, मुकेश की आवाज़ सुनकर आप खुश हो गए हैं. यू आर द बेस्ट परवीन जी. जब समय मैं किसी की फरमाइश पूरी कर दूँ ना, वो कहते हैं यू आर द बेस्ट. और मुझे उम्मीद है कि फरहंदा शेख भी यही कहेगी कि यू नहीं, एक्चुअली मैं नहीं चाहती क्योंकि मुझसे बेहतर बहुत हैं.

और मैं बस एक ही समय आपके लिए जानकारी लेकर आई थी, यूनाइटेड किंगडम से ये खबर है और बड़ी अच्छी खबर है, साइंस की दुनिया से। यूके में समझ, एक जो कैंसर होता है उसको कहते हैं सर्विकल कैंसर लड़कियों को। अब सर्विकल कैंसर से मरने वाली औरतों की तादाद क्या हो गई है? जीरो। यूके में सिफर पर आ गई हैं वो औरतें जो सर्विकल कैंसर से चल बसती थीं। एक वैक्सीन है जो इनको, विमेन को सुरक्षा देती है, HPV। अगर ये टीका ना होता तो कहते हैं कि 200 ब्रिटिश खवातीन की अब तक मौत हो गई होती। लड़कियों को HPV वैक्सीन 12-13 साल की उम्र में दिया जाता है। और समन ये है, बीमारी एक वायरस से होती है, ये सर्विकल कैंसर, HPV है उसका नाम वायरस का। स्किन से स्किन कांटेक्ट के साथ सर्विकल कैंसर फैलता है। कैंसर रिसर्च यूके ने खुशी का इजहार किया है इस खबर पर कि हमारी वजह से, इन्होंने किया था इस रिसर्च को फाइनेंस, तो वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं कि एक जैब, एक टीके से आप एक औरत को जिंदा रहने का मौका दे सकते हैं।

0: as early as possible, noting that lasting wealth is built gradually through discipline, consistency and patience. That's the news update on East FM. I'm Tony Ngala.
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
2: बिल्कुल सोनल, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. आपने सारे ही स्टेटमेंट्स का सही जवाब दिया. सो आपको बनाएंगे क्लास का कैप्टन. यू नो दैट हैप्पीनेस ऑफ बीइंग द क्लास कैप्टन. हैज इट एवर हैपेंड विद यू? हैव यू एवर बिकम योर क्लास कैप्टन और टीम कैप्टन इन स्कूल? ओ माय गॉड, यू फील लाइक यू ओवर द वर्ल्ड. इतना एटीट्यूड आ जाता है अपने अंदर उस टाइम पे. I always wanted to be. So हमारी क्लास में दो होते थे, कैप्टन एंड असिस्टेंट. एंड देन फाइनली व्हेन आई वेंट इन ग्रेड 8 इज व्हेन आई वाज मेड द क्लास रूम कैप्टन, द क्लास कैप्टन ऑफ मेरा डिवीजन भी याद नहीं मुझे. आई थिंक वाज इन डिवीजन बी. व्हाट डे इज, यू नो, ओह इट्स थर्सडे, थ्रो बैक.